0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: हिंदी कांड को सीधे आकाश में सुन रहे हैं। अब आपके साथ है शोरा न्यूज़ोवा और हमारे प्रोड्यूसर अजीज़ोवा दौलत। इस घंटे की मुख्य खबर है। चीन में आयोजित 9वीं अंतर्राष्ट्रीय चीन यूरोश एक्सपो में ताजिकिस्तान का राष्ट्रीय मंडप स्थापित किया गया है। इस प्रदर्शनी में ताजिकिस्तान की 27 कंपनियां निर्माण, कृषि, वस्त्र उद्योग, पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रों के अपने उत्पाद और सेवाओं का प्रदर्शन कर रही है। इस भागीदारी का उद्देश्य व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को मजबूत करना, निवेश आकर्षित करना, नए व्यवसायिक संबंध स्थापित करना और निर्यात के अवसरों का विस्तार करना है। ताजिकिस्तान के शारीरिक शिक्षा संस्थान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भावी पीढ़ियों के लिए शांति सुदृढ़ीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक 2027-2036 प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के प्रतिभागियों ने ताजिकिस्तान के नए अंतर्राष्ट्रीय पहल का स्वागत करते हुए शांति, देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और सहिष्णुता में मूल्यों को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसे ताजिकिस्तान के कूटनीति की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के महिला मंच का आयोजन किया गया। इसमें ताजिकिस्तान की ओर से महिला एवं परिवार मामलों के समिति के अध्यक्ष बुनफशा फैजुद्दीन सौदा ने भाग लिया। मंच में महिलाओं की राजधानी सामाजिक और आर्थिक भागीदारी, महिला उद्यमिता, लैंगिक समानता तथा क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने जैसे विषय पर चर्चा की गई। ये मंच सदस्य देशों में महिलाओं की भूमिका और स्थायी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। ताजिकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय विदेश भाषा विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भविष्य की पीढ़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सुदृढ़ीकरण दशक 2027-2036 प्रस्ताव के उपलक्ष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति विषय पर एक वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में वक्ताओं ने शांति, राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और सहिष्णुता के महत्व पर प्रकाश डाला तथा कहा कि ताजिकिस्तान की ये नए शांति पहल विश्व स्तर पर शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। समाचार हमारे दूसरे प्रसारण जा रही है, हमारे रेडियो के साथ रहिए।

0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: हिंदी कांत को सीधे आकाश में सुन रहे हैं। अब आपके साथ है शोरा न्यूज़ोवा और हमारे प्रोड्यूसर अजीज़ोवा दौलत। इस घंटे की मुख्य खबर है। चीन में आयोजित 9वीं अंतर्राष्ट्रीय चीन यूरोश एक्सपो में ताजिकिस्तान का राष्ट्रीय मंडप स्थापित किया गया है। इस प्रदर्शनी में ताजिकिस्तान के 27 कंपनियां निर्माण, कृषि, वस्त्र उद्योग, पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रों के अपने उत्पाद और सेवाओं का प्रदर्शन कर रही है। इस भागीदारी का उद्देश्य व्यापार एवं आर्थिक सहयोग को मजबूत करना, निवेश आकर्षित करना, नए व्यवसायिक संबंध स्थापित करना और निर्यात के अवसरों का विस्तार करना है। ताजिकिस्तान के शारीरिक शिक्षा संस्थान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भावी पीढ़ियों के लिए शांति सुदृढ़ीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दशक 2027-2036 प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के उपलक्ष्य में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के प्रतिभागियों ने ताजिकिस्तान के नए अंतर्राष्ट्रीय पहल का स्वागत करते हुए शांति, देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और सहिष्णुता में मूल्यों को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इसे ताजिकिस्तान के कूटनीति की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया गया। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के महिला मंच का आयोजन किया गया। इसमें ताजिकिस्तान की ओर से महिला एवं परिवार मामलों के समिति के अध्यक्ष बुनफशा फैजुद्दीन सौदा ने भाग लिया। मंच में महिलाओं की राजधानी सामाजिक और आर्थिक भागीदारी, महिला उद्यमिता, लैंगिक समानता तथा क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने जैसे विषय पर चर्चा की गई। ये मंच सदस्य देशों में महिलाओं की भूमिका और स्थायी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। ताजिकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय विदेश भाषा विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भविष्य की पीढ़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सुदृढ़ीकरण दशक 2027-2036 प्रस्ताव के उपलक्ष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति के अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति विषय पर एक वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में वक्ताओं ने शांति, राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और सहिष्णुता के महत्व पर प्रकाश डाला तथा कहा कि ताजिकिस्तान की ये नए शांति पहल विश्व स्तर पर शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। समाचार हमारे दूसरे प्रसारण जा रहे हैं, हमारे रेडियो के साथ रहिए।